आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारिए देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारिए जो ऐसो चलसी सब कोई आई वारिए जिसके जी प्राण है को साहे।

0: चले अरदास चले अरदास चले अरदास
1: चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत तसनो अगलियो वजो पिदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गारे तंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिस दा दिता खावना तिसका ये सा बास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास।

0: प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थे। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। अज संगरांद दा पावन दिहाड़ा है। आओ सरवण करिए 12 माह चो इस महीने दा पाठ।
3: सतनाम श्री वाहिगुरु जी, आसार तपन दा तिस लगे हर

जा जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास आसार्त पंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्रीराम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्रीराम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्रीराम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। साडे स्टूडियोज़ दी घड़ी दे मुताबिक इस वेले सवेर दे 6:55 होने वाले ने। कुछ पलों के इंतजार तो बाद संस्कृत विच समाचार सुनोगे।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट। चाहवान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: ब्रेक तो बाद सोनी स्पेयर प्रोग्राम फिर तो हाजिर है जी। आकाशवाणी जलंधर से यह प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है ते तुसीं 8 बजे तक साडा यह प्रोग्राम सुनोगे तो सानू पूरी पूरी आस है कि तुहाडा साथ साडे नाल रहेगा। पर जी साडे समाज विच ना साडे बजुर्गों का साथ साडी नौजवान पीढ़ी नहीं दिंदी। इहदे लई बजुर्ग बड़े मायूस रहिंदे ने, झुरदे रहिंदे ने। एक बार ना घर च एक बजुर्ग सी जिहदी 80 साल की उम्र हो चुकी सी, कमज़ोर हो चुका सी, हथ उहदे कंबदे सी। एक दिन कंबदे हत्थां नाल उन्हें रोटी की प्लेट फड़ी तो प्लेट उहदे हथों डिग पई, जिस ते ना नूह ते पुत ने उत्ते बड़ा गुस्सा किया कि बापू तेरे तो थाली भी नहीं फड़ी जाती, तेरे तो रोटी भी नहीं खाधी जाती, दे तो रहे हैं तेनों। तो यह देख के ना उन्हूं उस तो बाद प्लास्टिक की प्लेट तो प्लास्टिक के गिलास च उन्हूं रोटी दिती जाण लगी। तो एक दिन घर जिहड़ा छोटा बच्चा सी ना उन्हां दा, उन्हें वह प्लेट लुकाउणी शुरू कर दिती। तो वह माँ बाप उहदे बच्चे दे उन्हूं पुछण लगे कि तू प्लेट क्यों लुको रहा। तो वह कहिंदा जी कि पापा एक दिन तुसीं भी तो बुढ़े होना ना, जदों तुसीं बुढ़े हो जाओगे यही प्लेट यही कौली मैं तुहानूं दे देंगा। सो जी उस नौजवान जोड़े नूं इह समझ आ गई कि वाकई वह बजुर्गों के नाल गलत कर रहे हैं। तो आपां देखते हैं कि बहुत सारे घरां च बहुत सारे बजुर्गों नाल इदां दा गलत किया जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग सोचते हैं कि यार मैं परिवार का रुख होया करता सी, जिहड़ा परिवार नूं छां दिंदा सी, फल दिंदा सी, अज मेरी हालत टहनी तो टुटे पत्ते वर्गी होई पई है, मैनू कोई पुछता नहीं, मैनू पासे करके सारे अगे चले जाते हैं। सो जी अज जिहड़ा दिन है ना जी 15 जून का, यह पूरे संसार विच विश्व बजुर्ग दुरव्यवहार जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा, जिहदा मकसद यही है कि असीं अपने बजुर्गों की जिन्होंने सानू उंगल फड़ के जिंदगी दी राहां ते तुरना सिखाया उन्हां दा मान सत्कार करिए। साल 2006 विच ना इंटरनेशनल नैटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज ये संस्था वालों ये दिन मनाना शुरू किया गया सी। ते बाद विच दिसंबर 2011 विच संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने अधिकारित तौर पर इस दिन नूं मानता दित्ती सी कि 15 जून का दिन बजुर्गों के सत्कार की याद के रूप में आप जरूर मनाया करिए। तो जरूरत इस करके पई जी क्योंकि 60 साल तो ज़्यादा की उम्र के इस दुनिया च जिहड़े लोग ने ना हर 6 बजुर्गों चों एक बजुर्ग दे नाल किसी ना किसी रूप च दुरव्यवहार जरूर हुंदा। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे मामले तो लुके ही रहिंदे ने, बजुर्ग बेचारे दसदे ही नहीं कि साडे पुत साडे बच्चे मेरे नाल की कर रहे ने। 24 मामलों चों सिर्फ एक मामला ही सामने आउंदा जिहदे च ये पता लगता है कि बजुर्गों के नाल दुरव्यवहार हो रहा। सब तो ज़्यादा उन्हां दे नाल मानसिक दुरव्यवहार किया जाता है ते बहुत सारिया थावां ते वित्ती धोखाधड़ी का भी उन्होंने सामना करना पैंदा। सो जी अज अपने प्रोग्राम के जरिए असीं अपने सारे बजुर्गों नूं कहना चाहवांगे कि जे तुहाडे नाल किते कोई धक्का हुंदा है ते तुसीं चुप करके ना बैठो। जिहड़ा साडे देश का कानून है ये तुहाडे नाल है, किस तरीके दे नाल तुहाडे नाल है GPS राणा होरां तों जाणदे हां कि बजुर्गों दे सांभ संभाल दे लई किदां दे कानून बने ने।
3: ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿੰਗ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ

शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से

0: में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी।

0: सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है।

0: है, वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland.

क्रिकेट विश्व कप विच भारत ने ग्रुप ए मैच विच पाकिस्तान नू 64 दौड़ां दे नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां तुसीं सुणोगे सवेरे 10 बजे। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। एनडीए सरकार दे 12 साल पूरे होण ते एक विशेष प्रोग्राम तुहाडी सेवा च पेश कर रहे हां, जिहदा विशा युवा शक्ति। पेशकश अमनदेव जोशी दी।

0: युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो अपने हुनर नू अगे करके देश की बागडोर नू अगे लेके जा सकती है, देश की तरक्की विच वाधा पा सकती है। क्योंकि अज दे बच्चे कल दे नेता। पर देश की गल करिए तां भारत दुनिया के सब तो नौजवान देशों विचों एक है, जिथे कि लगभग 65% आबादी 35 साल तो घट उम्र की है। तो इस विशाल नौजवान शक्ति नू देश की तरक्की का इंजन बनाने लई साल 2014 विच सत्ता विच आई राष्ट्रीय जमहूरी गठजोड़ NDA सरकार ने सबका साथ सबका विकास ते विकसित भारत 2047 दे संकल्प तहत कई योजनावां दी शुरुआत कीती।
1: विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साथ अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।
0: साल 2014 तो लेके 2026 तक के सफर दौरान सरकार ने अपनी पहुंच नू युवा कल्याण तो बदल के युवा अगवाई वाले विकास विच तब्दील कीता है। इस प्रोग्राम विच असी 2014 तो 2026 दरमियान NDA सरकार द्वारा नौजवानों के सशक्तिकरण, हुनर विकास, रुजगार उत्पादन, उद्यमता अते कैरियर के वाधे लई शुरू किए गए मुख प्रोग्रामा, स्कीमा अते नीतियां दा विस्तृत विश्लेषण करांगे। ते जेकर असी गल करिए राष्ट्रीय युवा नीति 2026 दी, तां सरकार ने नौजवानों के विकास लई पुरानी 2014 की नीति नू अपडेट करके राष्ट्रीय युवा नीति 2026 लागू की है। तो यह नीति 15 तो लैके 29 साल के नौजवानों पर केंद्रित है। तो इसका मुख उद्देश भारत नू 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। नवी सिक्ख्या नीति NEP 2020 के अनुसार सिक्ख्या नू उद्योग मुखी बनाना, नौजवानों नू आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI ग्रीन टैक्नोलॉजी ते कोडिंग वर्गे आधुनिक खेत्रां लई तैयार करना, स्टार्टअप कल्चर नू पिंडां ते कस्बियां तक लैके जाना ते नौजवानों दी शरीरिक ते मानसिक सेहत ते विशेष जोर देना, नौजवानों नू देश दे फैसले लैण दी प्रक्रिया ते समाजिक सेवा विच शामिल करना, रुजगार योग्यता नू वधाउण लई सरकार ने 2015 विच स्किल इंडिया मिशन दी नींह रखी। इस दे तहत करोड़ों नौजवानों नू मुफ्त हुनर सिखलाई दित्ती गई है। इस योजना दे वख-वख पड़ावां ने देश दे नौजवानों नू उद्योग दे मियारां अनुसार तकनीकी सिखलाई दित्ती है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी कि बेरोजगार नौजवानों जां स्कूल कॉलेज छड़ चुके नौजवानों नू रुजगार दे योग बनाने लई 3 तो लैके 6 महीनों के कोर्स करवाए जाते हैं। अजिहे नौजवान जिन्हां कोल हुनर तां है जिवें कि मिस्त्री, कारपेंटर, पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हां दा टैस्ट लैके सरकारी सर्टिफिकेट दित्ता जांदा है तां जो वड्डियां कंपनियां विच नौकरियां प्राप्त कर सकन। सिर्फ किताबी ज्ञान नौकरी दवाउण लई काफ़ी नहीं हुंदा। NAPS के तहत नौजवानों नू सीधा उद्योगों विच काम सीखण दा मौका मिलता है। सरकार इस दौरान मिलण वाले स्टाइपेंड दा एक हिस्सा खुद स्पॉन्सर करती है, जिस नाल कंपनियां नौजवानों नू रखण लई

0: जाता है। आज दा नौजवान सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अते कोडिंग वर्गियां आधुनिक तकनीकां सीख के दुनिया का मुकाबला कर रहा है। सब तो वड्डी तब्दीली साडे सोच विच आई है। स्टार्टअप इंडिया अते प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने नौजवानों नूं नौकरी मंगन वालियां तो नौकरी देण वाले बना दिता है। अज बिना किसी गरंटी के मिलन वाले बैंक लोन सदका पिंडां अते छोटे कस्बियां दे नौजवान भी अपना कारोबार शुरू करके अपने सुपने सच कर रहे हैं। सरकारी भर्तियों विच ग्रुप सी अते डी लई इंटरव्यू खत्म करना एक इतिहासक कदम सी, जिसने सिफारिश कल्चर नूं खत्म करके मेहनत अते गरीब परिवारां दे बच्चियां नूं बराबर दे मौके दिते ने। खेडां दे मैदान विच खेलो इंडिया ने पिंडां दी लुकी हुई प्रतिभा नूं ओलंपिक दे मंच तक पहुँचाया है। हाल ही विच शुरू होया मेरा युवा भारत पोर्टल साडे वर्गे लखां नौजवानां नूं एकजुट करके राष्ट्र निर्माण दे कारजां दे नाल जोड़ रिहा है। अखीर विच मैं यही कहांगा कि अज दे भारत विच नौजवानां कोल उड़न लई खुला आसमान है अते सपोर्ट करन लई इक मजबूत सरकारी नीति है। आओ असीं सारे मिल के इन्हां नीतियां दा लाभ उठाईए अते 2047 तक भारत नूं इक विकसित राष्ट्र बनाउण विच अपना योगदान पाईए। धन्नवाद। जय हिंद, जय युवा शक्ति।
1: मेरे जोशीले नौजवान साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल अते आदाब। अज मैं इत्थे किसे सियासी चर्चा लई नहीं बल्कि एक नौजवान वजो उस माण अते आत्मविश्वास दी गल करन आई हाँ जो पिछले कुछ सालां विच NDA सरकार दीआं नीतियां सदका साडे अंदर पैदा होया है। अज मैं गल करांगी नौजवानां दी अगवाई अते पारदर्शिता दी। साडे देश विच सब तो वड्डी चुनौती इह हुंदी सी कि एक आम जां पेंडू पिछोकड़ वाले नौजवान नूं अपनी प्रतिभा दिखाउण दा सही मंच नहीं सी मिलदा। सरकार ने नैशनल करियर सर्विस अते रुजगार मेलियां राही भर्ती प्रक्रिया नूं इन्ना पारदर्शी अते डिजिटल बना दिता है कि हुण बिना किसी सिफारिश जां रिश्वत दे निरोल मैरिट दे आधार उत्ते नौजवानां नूं सिद्धे नियुक्ति पत्र मिल रहे हन। इस ने देश दे सिस्टम विच साडा भरोसा मुड़ बहाल किया है। इस तों इलावा उच्च सिक्ख्या अते खोज दे खेतर विच जो क्रांति आई है वह बेमिसाल है। अज साडियां भैणां अते पिछड़े वर्गां दे नौजवानां नूं उच्च सिक्ख्या लई विशेष स्कॉलरशिपां अते सस्ते लोन दित्ते जा रहे हन। फिट इंडिया मुहिम ने साडी सेहत अते मानसिक तंदरुस्ती वल ध्यान दित्ता है क्योंकि एक तंदरुस्त नौजवान ही तंदरुस्त समाज सिरज सकदा है। सब तो अहम गल, मेरा युवा भारत वर्गे प्लेटफॉर्म ने सानू सिर्फ मुकाबले दीआं प्रीख्यावां तक सीमित नहीं रख्या बल्कि देश दे प्रशासन अते समाजिक सुधारां विच सिद्धे हिस्सेदार बनाया है। अज दा नौजवान नीतियां दा सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि नीतियां बनाउण वाला बन रहा है। मेरे साथियों, हुण समां बहाने बनाउण दा नहीं बल्कि मिले होए मौक्यां दा फायदा उठा के अग्गे वधण दा है। आओ असीं सारे देश दी इस युवा शक्ति दा हिस्सा बनीए अते भारत नूं विश्व गुरु बनाउण दा सुपना साकार करिए। धन्नवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: ब्रेक तो बाद असीं फिर हाजिर हाँ जी। आकाशवाणी जलंधर ते इस वेले गजलां दा प्रोग्राम चल रहा है जिस विच तुसीं मुख्तलिफ फनकारां दीआं गाईआं गजलां सुन रहे हो। ते आओ फिर इस प्रोग्राम च जिगर मुरादाबादी दा कलाम सुनीए। आवाज़ां ने अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन दीआं।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर

0: समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्र

0: कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनदे हां जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशां भेजण लई वट्सएप नंबर नोट करो जी 9465560 77। तो टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम, ते सानू वट्सएप राहीं भेज दिओ जी। शुरू करदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी शहनाज़ अख्तर दी आवाज़ विच इस गीत दे नाल।

एक बार फिर स्वागत है जी तुहाड़ा प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी विच। पढ़ते हाँ तुहाड़े द्वारा भेजियां गई होर फरमाइशां जो सानू भेज रहे ने पिंड बुरज मानसा नेड़े मौड़ मंडी जिला बठिंडा तो राम सिंह तगड़, भिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़, सुरिंदर जौड़ा नेड़े फाटक मौड़ मंडी तो, गुरजीत नंबरदार मानसा कला तो, मलकीत मानसा कला तो, गुरतेज कैंत पिंड जलूर मंगू राजस्थानी मौड़ मंडी तगड़ फैमिली ये सारी फरमाइश कर रहे ने जी। कन्वर गरेवाल की आवाज़ में कोई भी गीत सुना दिता जाए जरूर इन्हों की फरमाइश पूरी कर देंगे। अगली फरमाइश सानू भेज रहे हैं जी जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवन में जैन। ये फरमाइश सानू भेज रहे ने मेरठ तो, कह रहे ने कोई भी पंजाबी गीत विच शामिल कर लिया जाए। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने जी दिलबाल सिंह बाजवा दुबई तो। अगली फरमाइश आ रही है जी सानू बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। फरमाइश कर रहे ने कोई भी पंजाबी गीत सुना दिता जाए। आओ इन्हां सारयां दी रली बिली फरमाइश ते सुनदे हाँ कन्वर गरेवाल दी आवाज़ विच एक गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮਗ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय

अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का

0: आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

0: जी वाकई जड़ा बुजुर्गों का प्यार है ना बहुत औखा मिलता है ना, और उन्होंने
1: जी
0: सत्कार करना बहुत ही जरूरी है। ते देखो अलका बहुत सारे सिलसिले ने, आज सोमवार का दिन है ते साडा अगला सिलसिला की है।
1: जी साडा अज दा सिलसिला है मेहमान ब्रूहां ते अज साडे विहड़े जिहड़े मेहमान आए ने उन्हां दे नाम ने नीतू बाला ते अरविंदर कुमार। इन्हां नाल गलबात कीती है सुखजीत कौर जी ने।
0: बिल्कुल जी, ए कुछ चिर पहला आए सन साडे कोल ते सुखजीत होणा ने गलबात कीती सी, ते सुनिए फिर
1: इन्हां
0: जी।
1: दे तजर्बे।
2: मेहमान ब्रूहां ते प्रोग्राम च तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। वी अज दे इस प्रोग्राम च जिस जोड़ी नूं असीं दावत दित्ती है ना, उन्हां दा नाम है अरविंदर कुमार ते नीतू बाला। मारांगे इन्हां दी जिंदगी ते चात ते करदे हां जी कुछ इन्हां दे नाल खट्टियां मिठियां यादां सांझियां। अरविंदर कुमार जी ते नीतू बाला जी, तुहाडा दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी आयां नूं स्टूडियोज़ दे विच।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: अरविंदर जी, सब तो पहला सवाल तुहाडे कोल ही आ गया,
3: जी
2: शादी
3: बिल्कुल।
2: कहड़े सन विच होई सी?
3: शादी हुई है 2004 च।
2: 2004 च
3: जी
2: ते तरीक इन्हां नूं पुछ लीए, महीना इन्हां नूं
3: हाँ
2: पुछ
3: जी हाँ
2: लीए।
3: जी
2: हाँ जी नीतू जी, केड़ा तरीक, केड़ी तरीक ते केड़ा महीना?
1: 15 जनवरी 2004 विच साडी शादी हुई जी।
2: कित्थों पसंद कीती सी जी कुड़ी?
3: कुड़ी तां बड़ी देर पहले पसंद सीगी।
2: अच्छा
3: हाँ जी
2: अपनी मर्जी दी शादी है
3: हाँ
2: यानी
3: जी हाँ
2: कि?
3: जी
2: अच्छा
3: अपनी मर्जी दी है, पर सारे दी सलाह नाल आ।
2: सारयां दी सलाह नाल। सब तो वड्डी गल ए है कि जदों सारयां दी सलाह हो
3: हाँ
2: जावे,
3: जी
2: मर्जी अपनी हो जावे, ते फिर बहुत ही सोने ते सुहागा हो जांदा है।
3: जी
2: कित्थे वेख्या सी कुड़ी नूं पहली बार?
3: इहनूं देख्या सी जी, मासी दे मुंडे दा विआह सीगा
2: अच्छा
3: उत्थे।
2: रिश्तेदारी च ने?
3: हाँ जी हाँ जी
2: अच्छा ते फिर
3: हाँ
2: उदों
3: जी
2: सोचा सी वी इहो कुड़ी लैणी है बई
3: बस ओह फिर होंदे होंदे गलबात चलदी रही फिर।
2: जी। अच्छा नीतू जी, इन्हां ने तो तुहानूं पसंद कर लिया सी,
1: जी
2: कदी तुहाडा वी रुझान इन्हां वल होया सी?
1: नहीं, जदों इन्हां ने सोचिया सीगा उदों मेरे माइंड विच कुछ नहीं सीगा।
2: हम्म,
1: उदों तां सी कह लो, इन्हां ने तां काफी देर पहले ही सोच लिया सी।
2: अच्छा
1: उदों तां मैं तां सोचदी सी नहीं, हजे तां मैरिज दी एज नहीं है, हजे असी स्टडी कंप्लीट करनी, अपने पैरां ते स्टैंड होना आ। बट इन्हां दे दिमाग च गल आ चुकी सीगी,
2: जी
1: तो काफी देर बाद मैनूं पता चली। फिर
2: अच्छा
1: गलबात हुंदे हुंदे चलो घरदिआं ने जिसरों सोचिया ठीक समझिया,
2: अच्छा
1: ते इन्हां ने गल करन दी कोशिश भी कीती, लेकिन बस थोड़ा जिहा मतलब कि इन्हां ने भी अपने अपने सुभाअ करके असी गल खोल के कर नहीं सकी।
2: अरविंदर जी, विचोला तो पाया ही होना विच कोई?
3: विचोला पाना ही पैना सीगा फिर,
2: गुजारा नहीं सी।
3: अपनी मामी नू पाया फिर विच।
2: अच्छा
3: मैं कहा जाओ जी फिर करो गलबात कोई जाके,
2: ते फिर मामी जी की कहंदे?
3: फिर होगी गलबात कहंदे चलो तैयारी करो।
2: अच्छा कित्थे पेके ते कित्थे सोरे नीतू तुहाडे?
1: मेरे पेके लुधियाने शहर विच है ते
2: हाँ
1: सोहरे जलंधर शहर विच।
2: हाँ वैसे कहंदे ने नच्चा मैं लुधियाने शहर, मेरी धमक जलंधर
3: बस
2: पैंदी।
3: धमक फिर हुण दोबारा लुधियाने पै रही है।
2: लुधियाने।

0: मजाक कर रहे हैं जी। और वैसे भी पति पत्नी जिदा से पहले ही कह चुके, एक गड्डी के दो पहिए होंगे ने, एक
1: जी
0: दूजे के पूरक होंगे ने।
1: नहीं, बच्चे का हवा हजे रहते भी है कि गिरी जाते
0: अच्छा मतलब गुस्सा मीन्स
1: हैं
0: है नहीं कि असी लड़दे हाँ, शुरू तो नहीं लड़ाई झगड़ा था,
1: जी।
0: ते वैसे कोई गल गुस्से ना कहती, जिस तरह ना सुभा देखते देखते थोड़ा
1: हाँ
0: जि वो गल्ला अपने जिस तरह आ जाए ने, कोई गल
1: जी
0: उच्ची आवाज ना कह दी थोड़ी जी, कि
1: जी
0: इस तरह नहीं है कि असं लड़ते हाँ जो साढ़े असं गुस्से ना बोलते एक दूजे नूं, वो नहीं
1: जी
0: है, बस हंसी मजाक में चलता रहा।
1: चलता रहिंदा, यानी
0: हाँ जी
1: कि कदी कदी तुसी दोनों नौकरी पेशा हो, जिवें कदी
0: जी
1: कदी घर विच किसे एक जने दी लोड़ पई ते छुट्टी कौन लैंदा
0: जिदी ज्यादा जरूरत होवे,
1: जी, ते ज्यादा जरूरत केड़ी पैंदी है जी फिर।
0: जिस तरह कोई बाहर का काम है तो ना आए जाते नहीं, अगर घर में जिस तरह गेस्ट आना या किसी ने आना है तो फिर मैं तैयारी करने लिए मैंने छुट्टी करनी पैंती
1: जी
0: जी।
1: जे ज्यादा ही लोड़ हो तो दोनों कर लीदा, सानू कोई दिक्कत नहीं।
0: छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं
1: नहीं
0: आई
1: नहीं
0: कभी भी।
1: सानू कोई दिक्कत नहीं।
0: यानी कि आसानी ना छुट्टी
1: हाँ
0: मिल
1: जी हाँ
0: जाती
1: जी
0: है। इको ही थां दे उत्ते काम करना,
1: हाँ जी
0: कदी कदी ऐदा होया कि इन्हां नूं औख आ गई, तुसीं समझाण आ गए जां तुहानू कोई प्रॉब्लम आ गई ते ये उपर आ गए, काम
1: नहीं, साडा काम ही अलग अलग है।
0: अलग अलग।
1: हाँ जी,
0: जी
1: इन्हां दा काम
0: ये
1: अलग
0: कंप्यूटर
1: है,
0: वर्क है,
1: ये कंप्यूटर वर्क है, मेरा हैगा मशीन दा।
0: थोड़ा कम मशीन
1: हाँ
0: दा,
1: जी
0: इलेक्ट्रीशियन
1: जी
0: दा जी, इलेक्ट्रीशियन
1: इलेक्ट्रीशियन।
0: दा काम है। चलो अलग अलग काम ने,
1: हाँ जी
0: ठीक है ना जी। और खाना दोपहर दा इकट्ठे खाने हो कि अलग अलग खाने हो?
1: हाँ जी, कट्ठे ही तकरीबन ज्यादातर।
0: ज्यादातर इकट्ठा खाने
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: इन्हों खाना गर्म करके सर्व करके खिला के ते फिर बाद च मैं खानी है।
1: बाद में तुसी खाने हो। तुहाडे शौक की ने अरविंदर जी? शौक बस पहले तो घूमन फिरंदा सीगा भी, कदी इधर घूमे कदी उधर, हुण ब्याह तो बाद फिर बस घर
0: फैमिली शौक बन
1: घर
0: गई।
1: चलाने शौक है बस, हुण भी घर वधिया तरीके नाल चलाया जावे, बस बच्चें दी
0: सुचारू ढंग ना
1: परवरिश
0: चल।
1: हो जाए बस।
0: तुसी विच जे विदेश भी गए सी, इन्होंने
1: हाँ जी हाँ
0: दस्या
1: जी, 2 साल ला के आया जी,
0: दो साल लगा
1: बहरीन
0: के
1: गया
0: ऐसे।
1: जी मैं।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: ते फिर आके फिर वापस इधर ही सेट होए।
1: आके फिर मैं कहा हुण बच्चे बड़े हो गए, फायदा नहीं कोई।
0: ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट है
1: हाँ
0: ना,
1: जी, बस मैं कहा
0: अपना मुल्क
1: जो
0: अपना वतन सब तो
1: इत्थे हैगा
0: बढ़िया
1: जो वही बहुत आ
0: जी। बाकी मैं भी मेरा मन भी यही सीगा कि घर दे विच अपनी फैमिली विच रहना ही ठीक है, जो बच्चे छोटे सीगे मेरा मन नहीं मनिया, कई कह रहे सी नहीं, जदों उत्थे भी काम इन्हें तो अच्छा सीगा, अपना काम सीगा, सेटल हो गए सीगे, बट मैं कहा नहीं, उस बच्चे छोटे बच्चा को रो थोड़ी खाओ लेकिन प्यार ना खाओ, अपने परिवार च बह के खाओ, मेरी सोच यही सीगी
1: जी। अच्छा, शादियां विवाहां दे बड़े सारे मौके आंदे होणगे, तुहाडी
0: जी
1: दोनों दी ड्यूटी हुंदी होएगी,
0: जी
1: ते कदी कदी इदां भी होया कि कंप्रोमाइज करके कोई एक जना गया? नहीं जाइदा, असीं दोनों ही हैं,
0: अच्छा छुट्टी ले ली थी है।
1: ड्यूटी साडी भारी लग जांदी किसे वेले, ब्याह जी लग जांदी साडी ड्यूटी, कुड़ी
0: अच्छा
1: नूं तैयार करके लियाणा है, मुंडे नूं तैयार करके लियाणा है, बस असीं उधर ही फसे रहीदा फिर।
0: अच्छा ये ड्यूटी तुहाडी की जिम्मेवार तुसी ज्यादा
1: जिम्मे
0: तां
1: हाँ
0: करके,
1: बस समझ, इदां ही समझ लो कुछ भी।
0: अगे तो हुंदा सी ना विआह च इक फुफ्फड़ हुंदा सीगा, उहनूं कहिंदे सी तू सीरनी दे कोल बह जा जिथे सीरनी बणदी, तू निगाह रखणी हलवाइयां दे
1: हुण
0: उत्ते,
1: फुफ्फड़ मासड़ चाचा ताया जिहड़ा बंदा ठीक लगदा अगले नूं, कहिंदा चल बई तूं ए कम
0: मतलब कि
1: कर।
0: सारे रोल इकट्ठे होके
1: हाँ
0: तुहानूं दे दित्ते गए हैं
1: बिल्कुल।
0: वी तुसी इत्थे जे
1: हाँ
0: विआह
1: जी,
0: च प्लेट पर प्लेट सिस्टम, तुसी प्लेटां गिणनियां वी किन्नियां
1: बस
0: प्लेटां लग
1: जो भी है भी अगले
0: गईं।
1: का कोई नुकसान
0: जिम्मेवारी।
1: नहीं होना चाहिए, कोई किसी नु कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कोई, बस
0: जी
1: साडी जिम्मेवारी ये होंगी है भी किसी नु कोई कंप्लेंट ना आवे,
0: जी
1: जो आया अगला खुश होके जावे, भी ये ना
0: जी
1: कहे भी सानू ये नहीं मिले जी, सानू वो नहीं मिले,
0: अच्छा
1: बस
0: नहीं तू तुहाडे केड़े केड़े शौक ने?
1: शौक बस अपने घर नू बहुत वधिया तरीके नाल रखना,
0: नीतू
1: आपा
0: जी
1: कौन
0: रेडियो दे नाल भी बहुत देर जुड़े रहे ने और
1: जी
0: भैणां दे प्रोग्राम दे नाल जुड़े रहे ने, बहुत सारियां पुरानियां भैणां जानदियां भी होणगियां इस गल नू
1: जी
0: कि अज
1: जी
0: भैणां दे प्रोग्राम च इक भैण बन के आए ने,
1: जी
0: ते
1: जी
0: हुण दसो
1: जी
0: रेडियो ते अलावा केड़े केड़े शौक ने?
1: रेडियो का शौक तो बहुत ज्यादा सीगा, और ये भी परमात्मा ने पूरा कराया, क्योंकि मैं जिस तरह इन्होंने कह गल सही की कि मेरा स्वभाव जिस तरह शायद कह लो शर्मीला जा कुछ इन्ना बाहर निकलना निकले तो, बट शौक सीगा एक भी, मैं अपने आप च गुनगुनाती रहती सी, बोलती रहती सी
0: की गुनगुनांदे सी?
1: मैं रेडियो न्यूज पेश कर रही हूँ, मैंने भी नहीं पता सीगा कि
0: अच्छा,
1: मेरा
0: आप ही
1: शौक
0: बोल बोल
1: है,
0: के देखते
1: बोल
0: सी,
1: बोल के जिस
0: असि
1: तरह
0: क्या सारे गीत गुनगुनाते रहते
1: नहीं,
0: सी।
1: गीत मैं घट गुनगुनाती हूँ, शब्द जरूर बोलती रहनी हूँ, शब्द सुनती हूँ और वही मुँह चो निकलते हैं,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: ते
0: अच्छा
1: उन्हां नाल जरूर जुड़े रही दा परमात्मा नाल, वो
0: हाँ
1: गुनगुनाते रही दा है, मतलब सवेरे भी काम करन लगे रसोई च वड़न लगे और तकरीबन सारा दिन
0: यानी
1: यूं
0: कि
1: जिवें
0: संगीत तुहाडा शौक है
1: जी।
0: जी, ते तुहानू संगीत किहो जिहा लगदा अरविंदर जी?
1: वधिया, मैं तो सुनता ही गाने रहना बस, जो टाइम मिले।
0: कभी गांदे भी हो?
1: नहीं, गान गूंदा तो कभी सोचा नहीं।
0: ओ इसीलिए कि हुण पता कि अगला सवाल कितने ये ना आ
1: हाँ
0: जाओ, जरा सुनाई दियो कि गाना सुनाना चाहते
1: नहीं,
0: हो।
1: बहुत गाने सुनते तो शुरू तो ही अनमैरिड सी, उदो तो इन्हां नूं बहुत शौक सी, साडी जदों अंगेजमेंट हो गई सी तो उस तो बाद इन्हां ने पहले तो सीडी चलती सी, सीडी दे विच गाने भर के अपनी पसंद दे मतलब

0: जे किसी ने कुछ कह भी देता, हाउ परे करते हो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल जी, ये सब तो
0: ना,
1: जरूरी है
0: सब
1: कि
0: तो
1: जरूरी नहीं
0: जरूरी
1: कि
0: है
1: एट ए टाइम ते जवाब देना
0: जी।
1: जेड़ी ओही ना। अजकल जिस तरह बच्चा सहनशीलता,
0: हाँ, सहनशीलता
1: हुण
0: एक बहुत
1: तक तो
0: बड़ा
1: ठीक चल
0: गुरमत
1: रहा, हुण तक तो आपां
0: है
1: नूं अपनी जनरेशन तक तो सारा ज सहनशीलता है, पता
0: जी।
1: है, लेकिन ओही चीज सहनशीलता जरूरी है। फिर की है जी, ओ भी माँ मतलब अपना परिवार समझो जी, ऐसा नहीं असीं व्याह के आए हाँ जां माँ बाप इहनां समझणे बेगानी है,
0: जी
1: ते परिवार नूं कह लो कि प्यार गुणमंत्र तो यही है कि प्यार होना चाहिए है।
0: जी सो रीतू जी ते हरविंदर कुमार जी, तुसी साडे स्टूडियो च आए, बहुत चंगा लग्गिया तुहाडे नाल गल्लां बातां करके। दुआ करदे हां कि तुसी आउण वाले समय च खूब घूमोगे फिरोगे, एक दूजे दे साहिन जीवोगे,
2: जी
0: ऐदां ही हसदे मुस्कुराउंदे रहो, और रोसे गिले तो कोई गल नहीं, निक्के मोटे हुंदे ही रहिंदे
1: हाँ
0: ने।
1: जी, सानू है
0: बहुत
1: भी
0: बहुत
1: नहीं।
0: शुक्रिया मेहमान ब्रूहां ते प्रोग्राम साडे अज दे जोड़े बनन लई।
2: धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद जी।
3: हाँ जी अलका, सुनी फिर इन्हें गलबात
1: बहुत वधिया गलबात लगी
3: जी।
1: मैनू इन्हां दी, अरविंदर कुमार ते नीतू बाला होरां जी दी, ते इन्हां नाल सुखजीत जी ने भी बहुत वधिया तरीके नाल गलबात कीती। वो तां अंदरों गल कढ़ांदे ने और उन्होंने सही गल्लां भी दसियां ने कि सानू अपने परिवार दे विच एडजस्टमेंट करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए है कि घर दे किस चीज़ दे विच खुश ने और अपनी खुशी वास्ते भी एक दूसरे नू पूरा पूरा टाइम देना चाहिए है।
3: बिल्कुल जी, ते हो सकता है कि आज ये प्रोग्राम सुनते होन ते फिर इन्हां नू एक गीत सुना दिए।
1: जी

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने

0: कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

रात 7:45 ते सुनोगे प्रोग्राम हिंदी टॉक विविधा प्रोग्राम ऑन योग रखे निरोग। इस नूं सुनन तो बाद तुसीं गज़लां दा आनंद माणोगे ते रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम रे मोदी बराती सलावा में सलावाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम रे मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट का उछाल आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मौसम के एतवार से एल नीनो के असर के बावजूद मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला केबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने मोदी सलवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में सलवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम मोदी को सलवाकिया के उनके हम मनसब की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और सलवाकिया के रिश्तों को मजीद उसत देने और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के नए इम्कान तलाश करने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम मोदी सदर पीटर पिल्लीगिरिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद सलवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगिरिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फीको के साथ सूदमंद मुजाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में सलवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क का यह पहला दौरा है। वजीर आजम का यह दौरा पिछले साल अप्रैल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सलवाकिया के दौरे और सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगिरिनी के रवां साल फरवरी में भारत में मुनाकिदा AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत के बाद हो रहा है। यह दौरा तिजारत, सरमायाकारी, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और सलवाकिया के दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा करता है। 52वां G7 सरबराह इजलास आज फ्रांस के शहर ईविया में शुरू हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब एक अहम मुस्बत वाकया ये पेश आया है कि अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर जाता है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। एक मुशतरका बयान में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के लीडरों ने कहा कि गैर मशरूत तौर पर आबनाए हुरमुज को फौरी तौर पर फिर से खोलना और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ जरूरी है। फ्रांस के शहर ईविया के साथ साथ जनेवा और लेक जनेवा खित्ते में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो बुध के रोज तक जारी रहेगी। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकाम के अतराब पूरे इलाके को रेड और ब्लू जोन में बांटा गया है और वहां QR कोड पर मबनी कंट्रोल निजाम के जरिए दाखिल होने को मुंजबित किया जा रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाजाबता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इन मुल्कों में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के सुदूर भी इसमें शामिल होंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को साझेदार मुल्कों की हैसियत से सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात को भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की सदारत में मुनक्किद होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस ने रवा साल के लिए चंद अहम तरजीहात का इंतखाब किया है। वसी तनाजुर में इनमें आलमी मईशत में हद से ज्यादा मौजूदा अहम

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमेरिका में अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला केबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। सुनते हैं अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत मोहित चौहान दी आवाज़ विच।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्जो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्जो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमरीका और ईरान के बीच शांति

0: समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ

0: इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:30 बज रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां श्री मिल्की राम दी आवाज़ विच एक गीत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हाँ हुण तक दे मुख समाचार। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के मध्य वर्ग ने राष्ट्र निर्माण च वडमुला योगदान पाया ते NDA सरकार उन्हां दीआं इच्छावां नूं पूरा करन लई काम कर रही है। BJP दे प्रधान नितिन नवीन ने कहा है कि पिछले 12 सालां विच सरकार ने भारत दे मध्य वर्ग नूं आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सहूलतां ते नवें मौकियां नाल समर्थ बनाउण लई व्यापक बदलाव कीते ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश कोल अनाज दा ढुकवां भंडार है अते एल नीनो दे बुरे प्रभावां दे बावजूद अनाज दी कोई कमी नहीं होवेगी।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं।

प्रगट जोत जग मगै पूर्ण पुरख प्रगट जोत जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस बरस बरस बरस गुरु गुरु कहायो पन मथुरा मूर्त।

प्राणी एको नाम ते आवो अपनी पत सेती कर जावो। मल्हार राग विचला ए गुरफरमान मनुख मातर नू उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम त्यौण दी प्रेरणा दिंदा है। उस प्रभु दा नाम जपिया समय दा प्रभाव इंसान ते नहीं पैंदा। संसार नाल जुड़े हुए जीवां दा हाल ते यही है, जे ही रुत काया सुख तेहा ते हो जे ही देही। ते नाल ही फरमान है, नानक रुत सुहावी साई बिन नावै रुत के ही। परमात्मा दे नाम तो बिना कैसी रुत है, कैसा सुख प्राप्त होएगा। बाणी के बोहित साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह माज महला पंजवां कर चौथा विच रुतां अते महीनियां दी बात कीती है कि किस तरह असी इस समय नू सफला बनाउणा है। अज संग्रांद दा पवित्र दिहाड़ा है, आओ सरवण करदे हां श्री 12 माह मांझ विचों।

उस संदी आस दो भाए वे गुच्छिए गल पई सो जम की फास जे हा भी जे सो लूने मथे जो लिखियास रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगे होए खलास कर किरपा प्रभ आपुणी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास आषाढ़ दा महीना भारत देश बहुत गर्म महीना गिणिया जांदा बड़ी तपश लू चलदी है पिंडा झुलसा के रख देंदी जमीन दी गर्दिश दे नाल या सूर्य दी गर्दिश दे नाल वातावरण देश इतनी गर्मी पैदा हो जांदी है जो कई दफा असह होंदी है पर एक होर गर्मी भी है तो मन की गर्दिश के नाल पैदा होंदी है फुरनिया के नाल पैदा होंदी है उस गर्मी नूं आख्या गया तृष्णा तृष्णा की अगन ठंडे पहाड़ों ते चले जाइए ठंडे दरखत की छां तले बैठ जाइए एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठ जाइए ठंडा जल पी लीए ता भी वो जी अंदर की गर्मी है शांत नहीं आती चंदन चंद न सरद रुत मूल न मिटई घाम शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम न शीतलंग चंद्र देवे न शीतलंग बावन चंदने शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध स्वजने सर्दी की रुत नाल भी मनुख नूं ओ ठंड नसीब नहीं हो सकती ना ही चंदन दे नाल जो ठंड परमात्मा दे नाम नाल नसीब होंदी है तो साहिब फरमान करदे ने असाड़ दा महीना उन्हां नूं ही तपाउंदा है और ये तपश उन्हां नूं बेचैन ते दुखी करदी है जिन्हां दे कोल हरी रूपी कंत नहीं है जिन्हां दे कोल परमात्मा दा नाम नहीं है जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान है अजन्म है आमरण है तेरा कोई जन्म नहीं तेरी कोई मौत नहीं ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है तेरे कोई माँ बाप नहीं तेरी कोई जात पात नहीं क्योंकि तू व्यक्ति नहीं है तू एक शक्ति है अगर तू व्यक्ति है तो फिर ये भी मनना पड़ेगा कि तू बच्चा है जवान है कि बुढ़ा है ना हो बूढ़ा ना हो बाला साहब कहन तू बुढ़ा तू बच्चा इस तरह की अवस्था उम्र के भेद तू नहीं रखता जे उसनु व्यक्ति मन लईए तो फिर ये भी मनना पड़ेगा कि वह स्त्री है कि पुरुष है क्योंकि दोहां च एक मनना पड़ेगा साहब कहने जो जगत का जीवन है जो जगत की चेतना है जो जगत के पसरी हुई शक्ति है उसने त्याग के जीवन बतीत करता है मनुख की आस से दे भाए विगुची है गल पई सो जम की खास दे भा पुन कर लेंदा है पर कठोरता नाल भी पेश आ जाता है एक कदम अगे चलता है एक बजे कदम पिछे चलता है इस तरह की दुविधा विच फसिया रहिंदा है अंजाम की हुंदा है जमा दी फाई गल विच पै जांदी है जेहा बीजे सो लूणे मथे जो लिखे आस करम ते मस्तक विच लिखे जांदे ने करम ते मन विच लिखे जांदे ने अंदर संस्कार बनदे ने कीते कर्मां नाल संस्कार बनदे ने उन्हां संस्कारां नाल सुभाव बनदा है सुभाव नाल प्रालबद बनदी है प्रालबद नाल दुख सुख दा अगों जन्म होंदा है तो मूल गल ते आ गई कर्मां दे साहिब कहिंदे जैसा बंदा जो है बीजदा है वैसा उसनूं वड़ना पैंदा है और कीते

जिनको साधु पेटी है सो दर गए हुए खलास, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास। श्री बारह मां मांझविचों इस रचना का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी एक होर रचना विच फरमाउंदे ने, आवो सजना हाओ देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़ै खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। इस शब्द का गायन किया है भाई अर्जन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आवो सजना हाउ देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनुड़ै खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अर्जन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने, जिन्हां गुरमुख जना ते अकाल पुरख की कृपा हो जाती है। उन्हां अनन प्यारे गुरमुख जना नूं अकाल पुरख नाल अभेदता प्राप्त हो जाती है ते मन अंतर विचली

0: हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द।
1: हुणे तुसी सरवण कर रहे सी साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे शाम 6 बजे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने

0: पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो। लो हुण सुणो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच कम दियां गल्लां तो इलावा लड़ीवार पंजाबी नाटक सुनोगे, होया देस पराए दी 11वीं कड़ी। इस तो इलावा कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

शाम 7:10 ते साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे विशेष प्रोग्राम जो कि आधारित होएगा केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने ते। आज दा प्रोग्राम फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ते आधारित रहेगा। सत्त बज के 45 ते प्रोग्राम विविधा तहत हिंदी वार्ता सुनोगे योग रखे निरोग। वार्ताकार होंगे शर्मिला नाकरा नकारा। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

रात 9:15 बजे सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे चलकी कथालोक। एक कथालोक कर गुरुसिमरन सिंह की कहानी आधारित होएगी। भाग लैन वाले कलाकार होंगे अनिल वर्मा, राजेश शर्मा, कविता शर्मा ते प्रभजोत कौर। प्रस्तुति गुरविंदर सिंह। रात 10:02 ते चंद कवालियां समात फरमाओगे। कवालियां तो बाद रात

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता ली 011-23

0: 8121428 ते संपर्क करो।
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
2: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण होंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वाली पंजाबी खबरों का प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार के माण मत्ते 12 साल की कामयाबी की कहानी आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की जुबानी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: 10 लाख दी लॉटरी मेरी।
1: फसी फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।

0: लड़ीवार रेडियो नाटक होया देश पराया दी दसवीं कड़ी च तुसी सुन चुके हो कि नशे छड़ के पाक साफ होए करमप्रीत सिंह नूं मोनू मुंदरा वाला ते कालिया कलयुगी वल्लों अगवा करन दा हीला पिंड दे लोकां ने नाकाम कर दिता है। ईशप्रीत कैनेडा च काम करदिआं पढ़ाई करनी शुरू कर लैंदा है।
1: बाहर निकल के इत्थे ब्रांडियां च बैठ जा, कुछ मिंट ही लगणगे। इत्थे आपां नूं पार्किंग नहीं मिलनी, सो आपां नूं तेरा लगज लै के कुछ फासला तुरना पैणा।
2: ठीक है शिंदा अंकल।
3: शुक्र आ, फोन ते गलता हो गई। आ रहे आ शिंदा अंकल। अच्छा, उन्हां दी शकल सूरत या हुलिया किस तरह दा होगा? दादी मां ने एक बार कहा था सी।
4: देखो काका जी, शिंदा अंकल लगदा ता तेरा दादू ही है, पर तू ओनू बाबा जी ना करदा रही। वो अपने बिजली आले वांगू चल वलला जा बन के नहीं रहिंदा। कतरी हुई दाढ़ी, छोटी कीती दाढ़ी चंगी तरह रंग रुंग के बना सवार के रखदा है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
3: ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਊਂਗਾ।
5: ਸ਼ਰਾਫਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਿਲਾਓ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਣਿਆਈ ਮੋਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੇਵੇ ਮਦਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੂੜ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਓ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ?
0: ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ ਦੀ 11ਵੀਂ

0: पाला न्याणियां दा साला बुढ़ियां दा गाला।
1: एक रात पढ़ाई का काम मुका के ईशप्रीत गद्दे उत्ते टेढ़ा होया तो उसकी वक्खी विच दर्द उठा। वह सोचण लग पिया कि उस हालत विच वो की करे। चूरन जवैन ते काला लून वगैरह सब कुछ रसोई विच ही सी ते रसोई का दर बंद सी। तकलीफ वधदी जा रही सी। दूजे पासे परमीत ने रात नूं उन्हां नूं डिस्टर्ब ना करन दी चेतावनी दित्ती हुई सी। ईशप्रीत नूं तड़फदिआं होइआं भी वह चेतावनी याद आ रही सी। उसका दिल किया कि वह पंजाब च छिंदे जां दिलराज कौर नूं फोन करे। भारत विच उदों दिन सी, उदां उसनूं मेन गेट का कोड तो याद सी। वह गैराज का शटर चुक के बाहर निकलिया। उसने कोड ला के दर खोल लिया। फिर उसने रसोई की लाइट जगाई तो गैस उत्ते पानी तत्ता करन लग पिया। बिड़क सुन के परमीत दौड़ी दौड़ी हेठां आई।
2: Who is it?
3: मैं जी, मैं ढिड बहुत दुखदा पिया, चूरन खाने लिए पानी तत्ता करदा सी।
2: ओ तू मैनू कॉल करदा? हुण मैं तां खड़का सुन के घबराई होई 911 नूं कॉल करन लगी सी। तू हिसाब नाल खाया कर काका, ढिड तां अपना ही है, खान वेले इस ते तरस करीदा, रात नूं माड़ा मोटा ही खाईदा। तू तुन लैना दो मोटियां कच्चियां पिल्लियां दुपड़ा।
3: मैं सोचिया तुहानूं बेआराम काहनूं करना।
2: बेआराम दा लगदा, हुण वी तां होई आ।
1: तत्ते पानी नाल चूरन ते जवैन की फक्की खा के ईशप्रीत नूं रता को आराम महसूस होया तां वह अपने बिस्तरे विच वड़ के पै गया। परमीत बुड़बुड़ करदी चली गई सी। परमीत दे बोल उसके कन्नां विच गूंजदे रहण की वजह नाल उसनूं किन्ना ही चिर नींद ना आई। एक शाम कॉलेज तो मुड़े ईशप्रीत नूं परमीत ने पुछया,
2: आ कॉलेज दे तेरे

0: ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਤਾੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਰ ਕੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਧਰੋਹਰਾਂ ਭਾਵ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੋ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ 1897 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਕੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਫਿਕੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਤੀਸਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ, ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
2: ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਕੇ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਖਲਾ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਜ ਸੁਣੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਔਰ ਆਵਾਸਨ ਤਥਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਯ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ। ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਸਿੰਘ।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद।
3: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का। तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
4: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
3: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
4: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से दो निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मूड है उनके जो रूट ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे। तो

0: एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे तरफ उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें
1: जी। एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े। लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी

0: अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं एनसीआर के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे, तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है। बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने

0: समाप्त हो जाएंगे और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1000 के बदले में 1000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरी बार में अगर दो बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण हैं ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई।

0: और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और

0: Today it spends 1,20,000 crores. So I think government spending is very important because a modern state is a welfare state. But that's not what... It reduces extreme poverty. It doesn't create prosperity. And monetary policy, after a few years on the RBI board, I haven't decided whether it's a placebo or a painkiller or a steroid. It's definitely not a medicine. So what if it's not monetary policy and fiscal? It is the trust of entrepreneurs. It is giving the space to entrepreneurs to grow and putting the bad entrepreneurs in jail.
1: As always, enlightening to speak to you, Manish. Thank you so much for speaking to us.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer was Anil Padmanabhan, senior journalist. This program will also be available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
7: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
8: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। लो सुनो हिंदी वार्ता योग रखे निरोग। वार्ताकार होंगे शर्मिला नाकरा।
9: योग रखे निरोग, ये तीन शब्द बोलने में जितने सरल प्रतीत होते हैं इनका अर्थ उतना ही गहरा और व्यापक है, क्योंकि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधि ही नहीं है बल्कि जीवन को समझने और संतुलित रखने की एक कला भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है, मन अशांत है तो उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। आधुनिक युग की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाने मात्र से ही प्रत्येक वस्तु घर पहुँच जाती है। हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ज्ञान का एक विशाल भंडार मौजूद है हमारी हथेली में। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बार बार मन में उठता है, जब सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं तो फिर तनाव क्यों? यह डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां हर उम्र के व्यक्ति में देखी जा रही हैं। हम हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से कटते जा रहे हैं। हमारे पास मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं, लेकिन मन में फिर भी शांति नहीं है। अब ये विरोधाभास हमें ये सोचने

पर मजबूर करता है कि ये समस्या बाहरी दुनिया में है या हमारे भीतर के संतुलन में है, और इसी असंतुलन को संतुलन में बदलने का नाम है योग। अतः योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं और ना ही शरीर को मोड़ने तोड़ने की कोई कला है, बल्कि योग तो जोड़ने की एक विधि है। अब ये योग जोड़ता किसे है? तो इसका उत्तर है, योग हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का कार्य करता है। योग हमें अधूरेपन से पूर्णता की ओर ले जाता है। योग हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आ रहा है। बच्चे परीक्षा के तनाव में हैं, युवा करियर की चिंता में है, वयस्क आर्थिक दबाव में है, और वृद्ध अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब हम कुछ मिनटों के लिए भी अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं, तो प्राणायाम का ज्ञान हमारे मन को विराम देना सिखाता है और वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। महर्षि पतंजलि ने सच ही कहा है कि मन की चंचल वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। योग हमें बाहरी दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उसके बीच रहकर भी संतुलित व्यवहार करना सिखाता है। हमें सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। और कई लोग ये सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का अर्थ है जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे, अच्छा ही अच्छा सुनाई दे। लेकिन वास्तविक सकारात्मकता का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी आशा को बनाए रखना, और योग हमें यही दृष्टिकोण देता है। योग हमें ये सिखाता है कि हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है, हर असफलता सफलता की तैयारी हो सकती है, और जब मन शांत होता है तब समस्याएं छोटी और समाधान बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से जीवन में यद्यपि सफलता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भावनात्मक संतुलन। आज हम लोग छोटी सी आलोचना से भी आहत हो जाते हैं और छोटी सी असफलता से भी टूट जाते हैं, तब योग हमें प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देना सिखाता है। योग हमें सिखाता है कि परिस्थितियां यद्यपि हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया अवश्य ही हमारे नियंत्रण में होती है। और योग हमें परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका साक्षी बनाता है। अब बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी की। आज का युवा अत्यंत प्रभावशाली है। उसके पास ज्ञान है, संसाधन है, अवसर हैं, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान का बिखराव। लगातार मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं का दबाव उसके मन को थका देता है। ऐसे समय में योग एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन जाता है। यदि युवा पीढ़ी योग को अपनाती है तो वो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं बनेगी बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और भावनात्मक रूप से भी संतुलित बनेगी। हजारों वर्ष पूर्व भारत ने संसार को योग दिया और आज पूरा विश्व इसकी शक्ति को स्वीकार कर रहा है। योग हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है, और हर असफलता सफलता की ओर बढ़ता हुआ कदम है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना केवल एक औपचारिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि योग मानवता की एक साझी विरासत है। योग हमें लंबा जीवन नहीं देता बल्कि जीवन में गहराई देता है। योग हमें केवल

0: सांसों की संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी सांसों को एक अर्थ देता है। और हमें चाहिए हम सब मिलकर योग को सिर्फ एक अभ्यास न समझें, बल्कि अपने जीवन का एक आवश्यक संस्कार बना लें। आज आवश्यकता इस बात की है कि योग को एक दिन का उत्सव न बनने दें। योग दिवस पर एक दिन योग करना और फिर सारा वर्ष उसे भूल जाना, यह योग की भावना के साथ न्याय नहीं होगा। बल्कि योग तो तब है जब हम प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर, मन और आत्मा के लिए निकालें, जब हम अपने भीतर झांकने का साहस करें, स्वयं को समझने का प्रयास करें। और जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित समय पर योग करने लगता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन व्यवस्थित होने लगता है, उसकी दिनचर्या सुधरने लगती है, उसके विचार स्पष्ट होने लगते हैं, उसके निर्णय पहले से भी बेहतर होने लगते हैं। वास्तव में योग केवल शरीर को नहीं व्यक्तित्व को भी प्रशिक्षित करता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि योग को अपने जीवन की एक शैली बनाएंगे। प्रतिदिन कुछ समय प्राणायाम, ध्यान और योग के लिए अवश्य निकालेंगे। अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार बनता है, स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज बनता है और स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। करें योग, रहें निरोग और अपने जीवन को बनाएं शांत, संतुलित और आनंदमय। धन्यवाद।
1: हुणे तुसी हिंदी वार्ता सुन रहे सी, योग रखे निरोग। वार्ताकार सन शर्मिला नाकरा। मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज च इक गजल समात फरमाओ।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उना ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, और जिंदगी उदों ज्यादा हसीन हो जाती है दोस्तों जो असीं दूजियां दी मदद करते हैं, क्योंकि यही सब तो वड्डी नेकी है और सानू सब तो वड्डी खुशी या साडे चेहरे ते मुस्कान उदों ही ज्यादा वधिया लगती जदों असीं दूसरे किसी की मदद करते हैं। और मुस्कान वो चीज़ है जो हर औखे वेले नू आसान बना देती है। जदों कोई मुश्किल आए तो सानू सबर रखना चाहिए ते मेहनत नाल हर मंजिल हासिल की जा सकती है। तो अपने आप नू दिन बर दिन कुछ ना कुछ नवा सीखते रहो, तो अगे बढ़ते रहो, अपने आप नू बेहतर बनाते रहो, क्योंकि कल अपने आप ही सोना हो जाएगा। चंगे विचार चंगी जिंदगी दी नींह रखते हैं, इस करके हमेशा चंगा साथ बना के रखो, सोच हमेशा सकारात्मक रखो। तो दोस्तों जे हौसले बुलाते ना तो मंजिलां अपने आप राह विखाउंदियां ने, क्योंकि जो सूरज वांग चमकना है तो सानू मेहनत करनी पेगी, पूरी मेहनत नाल सानू उहदी जलन भी सहनी पेगी और सूरज वांगू ता ही चमक सकते हैं। जिंदगी दी हर औखाई तुहानू होर मजबूत बना जाती है। कोई मुश्किल आ जाए तो घबराने की लोड़ नहीं, क्योंकि मुश्किलां साडियां राहां नहीं रोकदियां बल्कि सानू होर ताकतवर बना के जांदियां ने। विश्वास रखो, जिथे विश्वास हुंदा है उत्थे असंभव भी संभव बन जाता है। आओ दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीना नू अगे वधाउने ते अगला गीत तुहाडे लई अमृत फिल्म तो इस गीत नू गाया है मनहर उदास ते अनुराधा पोटवाल ने।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। दोस्तों, जिंदगी जीण दा तरीका हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और जिंदगी दा सब तो सोना ते सब तो वधिया राज जे है ओ ए है कि उम्मीद कदे नहीं छड़नी चाहिए। कहा जाता है कि सारी दुनिया उम्मीद ते कायम है, तो इस करके सानू उम्मीद कदे नहीं छड़नी चाहिए। अपनी मेहनत ते सानू हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत दा राह भावे लम्मा होवे पर मंजिल हमेशा सोहनी हुंदी है। हमेशा मेहनत करते जाओ तो अपने आप नूं कदे भी घट ना आको, क्योंकि रब ने उस उपर वाले ने हर एक इंसान विच कोई ना कोई खास गल जरूर दिती है। तो जिंदगी विच भी उही अगे वधदा है जो डर नूं पिछे छड्ड दिंदा है ते अपने मंजिल वल वधदा जांदा है।

होता है। हौसले हमेशा कायम रखो, क्योंकि हनेरी रात तो बाद ही सवेर आंदी है। और समय ते हर काम करन दी कोशिश करो, क्योंकि निकलिया होया हर एक पल मुड़ वापस नहीं आंदा। समय दी कदर करनी चाहिदी है, क्योंकि जो समय दी कदर नहीं करता ते समा भी उस दी कदर नहीं करता। जिंदगी दी किताब दा हर पन्ना सानू कुछ ना कुछ सिखा के जांदा है, ते हर पन्ना सानू अगले पड़ाव वल लैके जांदा है, साडी मंजिल वल। ते आओ दोस्तों, प्रोग्राम नू भी अगले पड़ाव वल लैके चलदे हां। अगला गीत तुहानू सुनाने हैं दयावान फिल्म तो। इस गीत नू गाया है अनुराधा पौडवाल ते मनहर उदास ने।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
5: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते प्रोग्राम विच अगला गीत है जी यलगार फिल्म तो। इस गीत नूं गाया उदित नारायण ते कविता कृष्णामूर्ति ने।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟ ਲਾਈਟ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का

0: केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में

0: देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
1: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
4: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism.

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगा हर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जुलम

0: मुल दा ही बोल दे, बच्चियां ते असर तो फिर पैना ही है। जद हर वेले मेरी मासी बापू दे इस कलेश दियां गल्लां करिया करदी सी, पर बापू ते औलाद दे वड्डी होण दा भी कोई असर नहीं सी।
1: हुण तां धी वी व्याही गई, खबरे हुणे ही
0: बेबे बापू दे सुभा दे बदल जाण दी उम्मीद रखदी सी, पर बापू तां शाम नूं दो तीन जने दरवाजे नाल दी बैठक च बैठे हुंदे। बेबे सानू रोटी खवा के चुल्हे अगे बैठी बापू दी रोटी खाण दी उडीक करदी रहिंदी। सियाल दी रुत्ते लोग अद्धी नींद पूरी कर लैंदे, जद बेबे बापू दे ओहदे बेलियां लई रोटी पकाउंदी। जद बापू घर हुंदा असी दोनों भैन भरा उच्ची साह नहीं सी लैंदे। जद कदी बापू बेबे नाल झगड़न लगदा असी दोनों जने अंदर वड़ के रोण लगदे। बापू रोटी वाली थाली दूर बगा मारदा ते बेबे नूं बालां तो फड़ लैंदा।
2: साली गंदे खानदान दी, बंदे एक रोटी खानी हुंदी है सारी दिहाड़ी खप के, ओ भी नहीं जुड़दी चज नाल।
0: तवे ते पई रोटी मच के कोला बन जांदी।
2: बी वार के है रोटी तत्ती ले आया कर,
0: बुड़बुड़ करदा बापू अंदर वड़ जांदा। मची हुई रोटी वाल देखदी बेबे अपनी हर वेले धुखदी रहिंदी जिंदगी बारे सोच सोच हंजू गेरदी। सानू दोहां भैन भरावां नूं नाल घुट के सौण दी कोशिश करदी, पर मैं सारी उम्र उहदियां अखां विच सकून दी नींद नहीं सी देखी। मैं अपने मामे दे मुंडे नूं पैसे भेज के बेबे दा ऑपरेशन करवाउण लई आख्या सी। ओह जदों बेबे नूं लैण आया उहनें ऑपरेशन वाली गल बापू नूं नहीं सी दसी।
2: लै जा भाई पेके लैण आए ने, मैं कौन हुन्ना रोकण वाला।
0: बेबे गुआंढन ताई नूं रोटी दा पक्का करके गई सी। ऑपरेशन मगरों जदों बेबे पिंड आई ताई बापू दी कथा छेड़ के बैठ गई।
1: भाई रोटी तां दिंदी जे तेरा साउ वेले सिर घर मुड़दा, दस दस बंदे बिठा छड़दा सी। मैं तां पहले दिन ही ड्योड़ी चो मुड़ गई सी। शराबी बंदे दा कादा चज, बाकी तू आप समझदार है।
0: ते बापू अपने सारे चज भुल गया सी। ओ बेबे नाल ऑपरेशन पिछे उखड़िया फिरदा सी।
2: जगतार सिंह सोही ना है मेरा, सिर सुआह पा दित्ती मेरी, ओ मेथों लाजना हुंदा तेरा, पुत मेरा दोही हथी नोट कठे करदा।
0: पर बापू ने कदी नहीं सी सोचिया कि दोहां हथां नाल नोट किद्दां कठे हुंदे ने। उहने कदी मैनू मेरा हाल नहीं सी पुछिया, हमेशा काम कार दा ही पूछदा। पर हुण ओही बापू मैनू तीन दिनां च 30 वार आख चुकिया सी।
2: भोलिया हुण नहीं जान देना मैं तैनू, ओ ब्याह दी तेरी उम्र टपदी जांदी है, तेरे हाणी दो दो जवाक चक्की फिरदे आ।
0: बेबे ने भी तां पता नहीं किन्नी कु वार कही सी इह गल मैनू, ओ फोन उत्ते ही मन भर आउंदी।
1: मैं तां जिवें सुख लिखा के ही नहीं आई, धी व्याह के अपने घर तोरती, पुत परदेसी रुलदा फिरदा है।
0: परदेसी रुलण दा किसदा दिल करदा सी, पर मेरी ते बापू दी बणदी नहीं सी। उहनूं किसे गल दी लत्थी चढ़ी नहीं सी, नित दारू पींदा ते पी के गालां बिना गल तो ही कढदा रहिंदा। बुढ़े बारे भी बेबे नाल तौल तप्फा करन लगदा, इन्हां गल्लां पिछे साडे च झगड़ा हो जांदा। एक बार बापू घर छड़ के मोटर ते जा बैठा, वेड़े चों किसे कुड़ी नूं रोटी पकाउण लई लगा लिया। उहदी शर्म होर चुकी गई।
3: भाईआ इहों ठीक नहीं हों लगदा, कुड़माला तू सुख नाल होर साल नूं नूं आजू करे टब्बर तो पासे। मामा बापू नूं समझाउण लई आया सी।
2: ओ मैं कड़ा लल्ली छलियां फौजिया, जद टब्बरी कदर ना करे दुनिया खांदी पींदी नहीं यार।
0: मामे ने समझाया भी बापू घर नहीं सी आया। लोग घर आके दसदे, कहंदे जगतार सिंह कहंदा मैं जमीन दान कर देनी है गुरुद्वारे नूं। ऐसियां गल्लां सुन के बेबे होर कलपण लगदी। फिर एक दिन बिस्तरा चुक के बापू

0: खुद ही घर आ गया।
1: तू ना एवें कह बड़िया कर, करी जान दे जो करदा।
0: बेबे ने बापू दे घर मुड़े ते जिवें सुख दा साह लिया सी। बापू मेरे नाल घुटिया घुटिया रहिंदा, मैं बापू कोलों दूर। जद जवाक नाल बोलना ही नहीं है सीधे मूँह। पर उस दिन हरखी बेबे अग्यों बोल ही पई सी,
1: तू तो कराता सी लाज है? अब मेरे पुत ने तो मेरी सार लैनी हुई सी, तेरी पुत ने भेजे सी डालर, तेरी शान नु फर्क नहीं पाके आई पेके।
0: बापू दूना उखड़ गया सी।
2: साले चोरियां कमाउंदे ने मेथों।
0: ओ दिन रात दारू पी के मैनू ते बेबे नु गालां कढ़दा रहा। पर ओही बापू हुण कई दिनां तों दारू छड्डी बैठा।

0: मैं बापू दे उस रूप तो हैरान हुंदा रहंदा जिवें हुण बापू दे इस रूप तो हैरान है। तीन चार दिनां बाद बापू फिर चंगा भला हो गया। एक शाम पैग लगाउंदा उठ के बाहर नूं तुर गया। सियाली रुत सी, मुड़दा होया हटियों मूंगफली रिओड़ियां चुक ले आया। रोटी खा के मेरे ते बेबे कोल आन बैठा।
1: खा लो भाई, रुत रुत दा मेवा।
0: मेरी संभाल विच बापू पहली वार इउं जीआं च बैठिया सी।
1: भोलिया, बाहर ना भेज दिए तैनू, इत्थे कड़ा रखिया कुछ की कहंदा? की पता है, मैं ते तेरी मां भी लै लिए जहाज दा झूटा।
0: एक गल करके वो खुद ही हसदा रहा। मैं सोचा दारू पी के कीतियां गल्लां बापू ने सवेर नूं भुल भुला जानी है, पर वह तो एजेंट नाल पक्कियां पकाउण लग्या सी। मैं एम ए ते दूजे साल च सी, पर एम ए पूरी ना होई, मेरा वीजा आ गया। ना मैं खुश सी ते ना बेबे, पर बापू कोलों चाह नहीं सी सांभिया जांदा। मैं बारां फोन करदा, बेबे जिवें बहुत डूंगी थां तो बोलदी,
2: कारी खाली हो गया, कंधा वाल वेखदी रहनी है सारा सारा दिन, प्यो तेरे दा तां पता ही है तैनू।
0: बापू जिवें होर आजाद हो गया सी।
1: जियां नाल ही रौनक है, तेरा व्याह होया हुंदा तां बेड़ा भरिया हुंदा, कुड़ी कड़ा बह रहना है, ओदा भी टब्बर टीहर है, हद भोग तक रुक जो, रौनक तां नाल ही रह गई तेरी बेबे।
0: बाहरों वापस आ गए बापू, फिर मन भर आया। रोटी वाले भांडे उत्थे ही पए सी, मेरी सुरती टुटी। जद बेबे ढिली सी, मैनू उदों क्यों नहीं दस्या बापू? तिना दिनां तो मैं बापू नाल बेबे बारे कोई गल नहीं सी कीती।
1: पुत सोचिया परदेस दा कम है, ढिल मठता हो ही जांदी है, की पता सी तू मुक्की तो पहुंचना।
0: मेरियां अखां अगे बेबे आ गई। जद मैं घर पहुंचया सस्कार दी तैयारी हो रही सी।
3: दो दिन हो गए पुत, राह वेखदे आ।
0: कोई जाना मैनू वराउण लग्या सी। मैं चिता नू लांबू लाया, सब तो उच्ची पुब बापू ने मारी।
4: तेरे बिना मेरा कौन वचन करे?
0: ओ न्याणिया वांग रोंदा रहा। बापू ने रोंदिया वेख के मेरा मन भी बेकाबू हो गया। मड़ियां तो घर तीक आउंदियां मेरे पैर मणा मूही भारे हो गए। कदे मेरे सामने तहां मारदा बापू आ जांदा, कदे बेबे, कदे सुरत संभली तो लैके हुण तक घर विच चलदे रहिंदे युद्ध की तस्वीर मेरियां अखां अगे चलन लगदी। पर बापू दा ये रूप मैनू हैरान करी जांदा। बंदे दे किन्ने रूप हुंदे ने, मैं मन विच सोचदा।
1: की सोची जाना भोलिया, जाके पै जा हुण, हुण लिखतां नू कौन मोड़े, घर तां जी जंत नाल ही सौंदे ने, तीवी मिणा घर का दा। वाहिगुरु
0: या

अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

आशा भोंसले ते भूपिंदर सिंह दी गाई इस गजल तो बाद गजलां दे इस प्रोग्राम विच अगली गजल जगजीत सिंह दी आवाज च समात फरमाओ।

0: ਪੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਨੀ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:05 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता

0: भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs,

71 या फिर व्हाट्सएप के लिए 94-655-36-077 आप जी ने अपना सुनेहा भेज देना ते किहड़े गीत नूं सुनना चाहते हो या किसी भी गायक जिस गायक की आवाज़ विच तुसी कोई भी गीत सुनना चाह रहे हो उस गायक का नाम लिख देना जुड़ना इस प्रोग्राम दे विच सारे दा कर रहे हैं प्रोग्राम दे विच स्वागत। इस तो पहला कि इस प्रोग्राम दा करिए आगाज़ दसदा जावां कि गीत संगीत दी महफिल 1 बजे तक ही नहीं जारी रहेगी, 1 तो 3 तक तुसी सुनोगे पंजाबी मेलोडियस गीत पंजाबी डुएट म्यूजिक प्रोग्राम्स भी। तो ठीक 3 बजे तो बाद साढ़े भगती संगीत के प्रोग्राम आरंभ होणगे जिस विच गुरबाणी विचार कुछ भजन भेटा सुनदिया हो श्रवण करते हैं। असी ठीक 4 बजे तुहानू लै चलांगे श्री दरबार साहब अमृतसर जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण श्रवण करोगे। सो इस वेले स्टूडियो घड़ी मुताबिक समा हो रहा है जी 11:12 का बिल्कुल जी रह गए हैं 10 कुछ सेकंड तो असी 12 मिनट पूरे कर लेने

चल रहा जी प्रोग्राम सौगात ते व्हाट्सएप दे जरिए प्यारा जा स्नेहा भेजा है सानू डेरा कलोनी फाजिलका तो धर्मा सागर हैप्पी सागर लक्की सागर इंद्रजीत मंगा भी यूएसए तो जुड़े ने साढ़े नाल ते वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा भी जुड़े ने प्रोग्राम दे विच सारयां दा करदा हाँ स्वागत रामपुरा बिशन तहसील डब वाली जिला सिरसा हरियाणा तो मखन राम जी जन

जी चल रहे प्रोग्राम सौगात ते गल फिरोज खान जो इस गीत विच करन लगे ने कि अपने दे नाल ही मिल के जरो बैठी दा है। हालांकि गीत तो जड़े भी लिखे जाते हैं जी वो तो प्यार दी मुहब्बत दी इश्क दी बात करते हैं, तो उसी भाषा च असी तो दो प्रेमिया नू ही अपने अपनी इमेजिनेशन च अपने सामने लैके आने अपने ख्यालों के विच। पर वैसे भी असी देखिए कोई भी दो जने हो दो इंसान हो मिल बैठते हाँ तो कोई ना कोई गल शुरू होंगी है। लंघिया होया कोई दुख का समय है तो जी वह भी वंड लईदा है, तो जे कोई चंगी मिठी याद बनी हो भी असी वह भी साझी करी दी है। पर मिल बैठण की गल है तो बिल्कुल, तो जे मुहब्बत इश्क की गल हो तो फिर ये भी चंगा है कि पानी दियाँ छल्लां होवन तू होवें मैं होवां।

सुरेंद्र कौर ते रंगीला जट दी आवाज़ च सुनिया जी ये गीत ते अगली फरमाइश सानू आई है जी बब्बू मान दी आवाज़ दे विच गीत सुनन दी। अंजू काकू ते मनजोत जी विनीपैग कैनेडा तो जुड़े ने जी ते मैं ये माफ़ी मंगते होएंगे जी बब्बू मान दी आवाज़ च जिहड़ा गीत तुसी लिखिया वह गीत इस वेले सिस्टम साडे कोल नहीं विखा रहा पर बब्बू मान दी आवाज़ दे विच ही तुहाडी फरमाइश किसी होर गीत दे जरिए जरूर पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि तुहानू ये गीत पसंद आएगा। ते नाल ही नाल आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरव शर्मा सानिया साइना ते निवान शर्मा भी जुड़ गए ने। साबुआना तहसील फाजिलका तो ओम प्रकाश विद्याराम स्वरूप संतोष कुंदन सोनिया सुखदेव सुमन रवि दीपक विकी मनीष आस्था पूनम सोनिया जुड़े ने जी। तो जे नाम कोई गलत पढ़ा हुआ हो माफ़ी क्योंकि तुम शायद कॉमे किसी ऐसी जगह लगा दिते जी कि मैनू लगा कि नाम पूरा है या नाम दो नाम ने माफ़ी ये लिए। मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा ललित शर्मा इंदराज शर्मा सुरेश शर्मा भी जुड़े ने जी। स्वागत इन्हों का। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी डबली आरती अरोड़ा सब जुड़े ने जी। इन्होंने सब का स्वागत कर रहा हाँ। धर्मा सागर जी थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत। फाजिलका तो

0: सुनो जी, प्रोग्राम सुखात ही करी फिर तो करदा हाँ निगाह स्वागत थोड़े सारे का। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया ते गुड्डू जुड़े हुए ने। निगाह स्वागत थोड़ा जी प्रोग्राम दे विच। सरंदी बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योति, सजनी भी इन जुड़े हुए ने जी, स्वागत थोड़ा। ते रघुनाथपुरा जिला श्रीनगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित ते खुशी गोस्वामी जुड़े ने जी, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत। ते सोमदत्त जी, ज्योति राणी, गैरव, गुरमनंद भी जुड़े ने मैस गेट नाभा तो, इन्हों सारे का भी बहुत बहुत स्वागत करता हाँ प्रोग्राम दे विच। ते अगला गीत सुनते हाँ जगजीत सिंह की आवाज़ दे विच।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी

चल रहा है जी प्रोग्राम सौगात, और इस प्रोग्राम दे असीं आखिरी पड़ाव ते पहुँच चुके हाँ। अज दे इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुणांगे, एक पंजाबी गीत गुलाम अली दी आवाज़ दे विच गाया होया। सारें दा धन्नवाद प्रोग्राम दे विच जुड़े रहन दे लई। सारे वट्सएप दे प्यारे स्रोत जिहड़े अज वट्सएप दे जरिए ही जुड़ सके, ते फोन लाइन जरिए ट्राई करन वाले सारे स्रोतों तों अज असीं मुआफ़ी मंगांगे। शुक्रिया बहुत बहुत सारें दा।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माह मिटावो। ये फरमान गौड़ी सुखमणी महला पंजवां बाणी विच्चों है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं सदा उस अकाल पुरख प्रभु नू सिमर सिमर के उसनू चेते करके सुख प्राप्त कर लिया है, ते मेरे मन अंतर विच्चों सारे दुख कलेश निवृत्त हो गए हैं। उस प्रभु दा सिमरन कीतियां दुख पलायन कर जांदे हैं। उना प्राणियां नू जमा दा दुख नहीं सतौंदा। प्रभु दा सिमरन करन वालियां दे नज़दीक किसे प्रकार दा डर नहीं आउंदा। प्रभु दा सिमरन करन वालियां नू कदे कोई दुख नहीं सतौंदा। इसे करके प्रभु दे प्यारे जन अपने मन अंतर दे विच उस प्रभु दा नाम सिमरदे हन, उसनू चेत

ते कर दे हन। हर जन सिमरह हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम। सरवण करदे हां भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: हर जन सिमरह हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम। इस शब्द गायन कीता सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बचित्तर सिंह।
1: जत श्री महला पंजवा, हर जन सिमरहो हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम। रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा, निश्चल गोविंद ताम, भगवंत भगत को पाओ किछ नाही, आदर देवत जाम, तज गोपाल आन जो करणी, सोई सोई बिन सत काम, चरण कमल हिरदय गहो नानक, सुख समूह विश्राम। ए पावन शब्द पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रसना तो राग जत श्री विच उचारण किया होया है। ते तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 702 उत्ते सवायमान है। इस शब्द अंदर सतगुरु जी परमेश्वर दे सिमरन की बरकत अते उस प्रभु का नाम जपण वाले गुरसिखां की महानता का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, हर जन सिमर हो हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवै, पूरन दास के काम। रहाओ शब्द दियाँ रहाओ दियाँ पंक्तियाँ अंदर शब्द का मुखसार हुंदा है। शब्द दे आरंभ दियाँ इस रहाओ वालियाँ पंक्तियाँ अंदर गुरु साहब फरमाते हैं कि हरी जे दे जन भाव गुरमुख मन करके उस निरंकार का नाम जपते हैं, इन्हां भगत जनां नूं कोई भी मुसीबत नहीं आती, भगतां दे सारे ही काम प्रभु आप ही सवार देंदा है। शब्द दियां इन्हां उपरोक्त सत्रां अंदर एक बहुत वड्डी फिलासफी छिपी हुई है, जिन्हां तो यह जग्यासा मन च पैदा हुंदी है कि हर जन कौन है, उसकी पछाण की है, हर जन किवें बनिया जा सकता है, हर जन बनन तो बाद उसनू की प्राप्त हुंदा है। तां इन्हां सवालां दा जवाब भी सानू गुरबाणी अंदर ही प्राप्त हुंदा है। असल विच हर जन एक विशेषण है। व्याकरण अनुसार किसी वस्तु जां व्यक्ति दे गुणां नू प्रगटाउण वाला अखर विशेषण कहाउंदा है। गुरबाणी अंदर सानू हर जन दे नाल नाल ही भगत, संत, गुरमुख, हरदास, गुरसिख, ब्रह्म ज्ञानी, सतपुरख आदि अनेक अखर पढ़न नू मिलदे हन। असल विच इन्हां सारे ही अखरां दा अर्थ एक ही है, जो कि प्रभु दे अपने गुणां नू ही उजागर करदा है। जिवें संसारक जीवन अंदर सानू बेअंत वार देखण विच मिलदा है कि संगत दा असर मनुखता दे नाल नाल पशु पंछी अते वनस्पति तक भी कबूलदे हन। जिवें तोता जिस माहौल विच रहिंदा है उही बोली बोलण लग पैंदा है। चंदन दे दरख्तां दे नाल वसण वाले बाकी वनस्पति दे अंदर भी खुशबू पैदा होनी शुरू हो जाती है, अते फुल्लां दे बाग दी होंद भी दूरों ही उस दी खुशबू राहीं अपनी होंद दा पता लगा देंदी है। इसे तरह ही परमेश्वर दा नाम जपण वाले अते हमेशा प्रभु दे भगतां दे नेड़े रहण वाले जीवां अंदर भी ये सारे सतगुण अपने आप ही आ जाते हैं, प्रभु का ही रूप बन जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी रचना विच इस अवस्था की प्रोड़ता करते हुए फरमाते हैं, हर हर जन दो एक है, बिब विचार किछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे, अते आत्म रस जह जानई, सो है आत्म देव, प्रम मह मोह मह तास मह, रंचक नाहन पेव। कबीर जी अनुसार, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू मुताबिक। जिमें सूरज अते उसकी किरण, चंद्रमा अते उसकी रोशनी, समुद्र अते उसके अंदर उपजी लहर विच कोई फर्क नहीं हुंदा, इसे तरह हरी अते हरी दे जन एक ही रूप

0: देव जी दे सिर बजदा है। उन्हां तो बाद भी समय समय सिर गुरु साहिबां ने माण नाल जीवन जीवन ते जोर दिता ते इस माण नूं बचाउण लई अपनियां जानां कुरबान कर दित्तियां ते शहीदियां प्राप्त कीतियां। भगती दी प्रक्रिया विच गुण आप मुहारे प्रगट हुंदे हन अते औगुण मिट जांदे हन। गुरबाणी दे पढ़न नाल, कीर्तन करन नाल, विचारां करन वाले माण नहीं करदे, निमानिया दा मान बनते हैं। परमात्मा तो बिना होर किसी ते टेक नहीं रहिंदे। सिर्फ परमात्मा दा ही मान है, उसका ही दिलासा है। मान निमाने तू तनी तेरा परवासा। पत नाल अहंकार नहीं आता, सगों होर निमाना हुंदा जाता है। शाहां दा शाह शहन शाह वाहगुरु आप है। उसके मुताबिक उसकी रजा विच रहन नाल सब कुछ प्राप्त हुंदा है। जिवें कपड़ा मनुख दा पर्दा ढकदा है, इवें परमात्मा दी सिफत सलाह करन वालियां दी पत रखदा है ते ओ पतवंते दी पदवी प्राप्त कर लैंदे हन। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नी।
1: प्रभु को सिमरै से पतवंते। ए वार्ता सुना रहे सन कमलजीत कौर। परमात्मा दे सिमरन दी महिमा अपरंपार है। प्रभु दा सिमरन सिरमौर है। उस प्रभु दा सिमरन कीत्या वड्डे वड्डे पापियां दा उधार हो जांदा है। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां च गुर फरमान है, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उधरै मूचा। सरवण करदे हां भाई अर्जन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे पासों इस शब्द दा गायन।
2: प्रभु

प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरह मूचा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अर्जन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

¡Rífate! Se va a ir más lejos a usted que Ekoanka Satgur Parasa Ek man Purkh Naranjan Tyavo Gur Parasa हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जन की आसा सतगुर सेव परम पद पाया अविनाशी अभिगत ते आयो

शब्द रास पाया, नाम निरंजन उर धरया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुरु रामदास सार अपार परे, छोटत पर

0: तिस प्रसाद वस पंच करे, कवि काल ठकुर हर दास तने, गुरु रामदास सार अपार परे, सतगुर दयाल हर नाम दिड़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कवि काल ठकुर हर दास तने, गुरु रामदास सार अपार परे।
1: अनभौ उन्मान अकल लागी, पारस भेटिया सहज करे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मांत मरण भौ पागा,

0: अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चर तैं जगत उदारन पायो।
1: जगत उदारन नव निदान भगत पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारन सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पै सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बुझायो।
2: सेज सदा सहज सावान संतोख सराय चो सदा सील सनाहो सो है गुर शब्द समाचरयो। नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पलो अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उच्चरे तो सहज सरोवर बा।

सतगुर नाम एकले मन जपे दरो तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जीओ तारण तरण खेण मात्र जाको दृष्ट तारे शब्द रत विचारे काम क्रोध खोवे जीओ जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता एन सत आन तावे पलक न सोवे जीओ जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जीओ सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप

किरत की गुरु रामदास राखो सरनाई सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसमंदी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म सजन सच्चा पात सा हो सिर सांदा

हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड़ मुगद सदा से पाई गुर का शब्द प्रगासा हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे जिचर कट अंतर है सासा एक पल खिन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड़ मुगद सदा से पाई गुर का शब्द प्रगासा

हर रसना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा आपे कर वेख मार्ग लाए पाई, तिस बिना अबर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई, करता करे सो होई, नानक नाम बसिया मन अंतर पाई, अवर ना दूजा कोई, आपे कर वेख मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अबर ना दूजा कोई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द।

पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज भगत समादं मुख झूठ वे भूखन सारं त्रिपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दुए धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म साफो कर निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावे विण सतगुर वाट न पावे पौड़ी।

दयाक पासन तो सूत जत गंडी सत वट जने जी का है ता पांडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन समान स्नान का जो गल चले पाए।